एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 8:54 हुए हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई 2026। इस समय सवेरे के 8:55 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल ध्वनि के साथ

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, मैडिक 103.7 MHz पर। श्रोताओं, आप प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज सवेरे 9:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। वहीं वंदना कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 9:20 पर। सवेरे 9:40 पर होगा कार्यक्रम साजों पर धुन। वहीं गाने पुराने जमाने के आप सुनेंगे ठीक 10 बजे। दस बजकर 30 पर आप सुनेंगे गाने नए तराने नए। शाम 5 बजे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

माताओं और बहनों के लिए पणिहारी कार्यक्रम का प्रसारण शाम 5:30 पर किया जाएगा। वहीं फिल्म संगीत एक बार फिर से आप सुनेंगे 6:05 पर। कार्यक्रम माटी के स्वर का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:20 पर। वहीं शाम 7 बजे किसान भाइयों के लिए किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत आप फिर से सुनेंगे 7:30 पर और रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे चिरमी लोक संगीत। और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे दर्द भरे गीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सदस्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता मंचों और स्थायी लोक अदालतों सहित कई स्तरों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रदेश में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा ने किया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि लोक अदालत के लिए 479 बेंच का गठन किया गया है। इनमें 7,77,000 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। कल जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई सैन्य रणनीति के साथ भारत के सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच कमांडरों से भविष्य के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। उन्होंने AI, स्वायत्त प्रणालियों, डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षित संचार नेटवर्क को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर मंथन किया गया। वहीं नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज

0: नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। श्री शेखावत कल जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इटली के वेनिस में आयोजित ला बिएनेल में भारतीय कलाकारों की भागीदारी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनियों में से एक है। इसमें भारतीय कलाकारों की भागीदारी लोकल से ग्लोबल बनने की दिशा में अहम है।
1: भारत के पवेलियन और भारत के कलाकारों की कला ने पूरे विश्व भर के कला साधकों का, कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया। न केवल ध्यान आकृष्ट किया, अभी तो भारत का पवेलियन यहाँ आज पूरी इटली में और देश भर के आर्ट लवर्स के बीच में चर्चा का केंद्र बना। भारत की सहभागिता के चलते हुए भारत के आर्ट लवर्स उनकी गहराई, उनके काम की क्षमता, दक्षता, प्रवीणता, इस सब के प्रति विश्व भर के आर्ट लवर्स का ध्यान आकृष्ट होगा।
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज और कल दो दिन दो दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए दो स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। ग्राम 2026 के तहत कल हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। ये समझौते राज्य में विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए किए गए इस बिजनेस मीट में निवेशकों, उद्योग जगत और एग्री टैंक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीट को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे अधिक मजबूती के साथ लागू करना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में गेहूं खरीद के लिए 25% अधिक टोकन जारी करने और मंडियों में पड़े गेहूं के उठाव के लिए पर्याप्त संख्या में रैक लगाने के निर्देश दिए। श्री बिरला कल कोटा बूंदी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि FCI सहित सभी खरीद एजेंसियां गेहूं लेकर खरीद केंद्र में आए किसानों की तुलाई का काम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीद का वर्तमान लक्ष्य पूरा होने के बाद भी अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाना और भंडारण की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ और NCCF के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत और अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। कल चिकित्सा आयुक्त BL गोयल के दौरे और प्रारंभिक जांच के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में देर रात एक चिकित्सक सहित तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। UTB में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय को सेवा से हटा दिया गया है, जबकि एक अन्य चिकित्सक सहित दो नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं वार्ड प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अस्पताल का दौरा कर दवाओं और ऑपरेशन प्रक्रिया के रिकॉर्ड की जाँच की है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर में करीब 100 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि ढाणी गैसकान में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
2: डानी गैसकान गांव से यहाँ पर एक फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली। लगभग 45 ग्रामीण और 34 बच्चे यहाँ वोमिटिंग की और पेट दर्द की शिकायत के साथ यहाँ आए थे। इनमें से अभी 3 बच्चे अपने एडमिट है, बाकी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं और बाकी ग्रामीण जनों का इलाज चल रहा है। ऐसे ही लगभग 14 बच्चे और 16 ग्रामीण के सापुरा भी दिखाने गए थे वहाँ पर, उनके इस शिकायत के आधार पर CBO साहब को मैंने वहाँ भेजा था। अभी 3 बच्चे वहाँ हैं, बच्चे

0: स्वस्थ हैं और सबका इलाज करवाया जा रहा है।
1: राज्य के अधिकतर स्थानों पर कल दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं 17 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 11 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार, कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में पहली भक्ति रचना प्रस्तुत है सुरेश वाड़ेकर की आवाज़ में।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 0152-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: श्रोताओं वंदना कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना हम आपको सुनवा रहे हैं रामप्रीति जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम साजों पर धुन, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीतों की धुन। तो चलिए, प्रस्तुत है जोश फिल्म की गीत की ये धुन।

श्रोताओं, कल हो ना फिल्म के बाद अगली फिल्म है हम तुम पे मरते हैं। इस फिल्म के गीत की धुन हम आपको सुना रहे हैं।

श्रोताओं, हम तुम पे मरते हैं इस फिल्म के गीत की धुन अभी आपने सुनी। अगली धुन हम आपको सुनवा रहे हैं किस्मत फिल्म से।

श्रोताओं, किस्मत फिल्म के गीत की इस धुन के साथ ही आज का साजों पर धुन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। इस समय सवेरे के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने पुराने ज़माने के, जिसमें पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहरा फिल्म से।

श्रोताओं, पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ों में आपने सुना मोहरा फिल्म का ये गीत। फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फूल और कांटे फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। प्रस्तुत है ये गीत।

श्रोताओं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में फूल और कांटे फिल्म का गीत अभी आपने सुना। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: है तार टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के, जिसमें अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मेरा दिल तेरे लिए फिल्म से।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, गाने पुराने जमाने के कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म मेरा पति सिर्फ मेरा है।

श्रोताओं, मेरा पति सिर्फ मेरा है, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सैलन सिंह और सपना की आवाज़ों में। गाने पुराने जमाने कार्यक्रम में अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दीवाना फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ने, प्रस्तुत है ये गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम, गाने नए तराने नए। इस कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं धुरंधर द रिवेंज फिल्म से। इस गीत को गाया है जैस्मिन सैंडल्स ने। प्रस्तुत है ये गीत।

श्रोताओं, जैस्मिन सैंडलस और सतिंदर सरताज की आवाज़ों में अभी आपने धुरंधर द रिवेंज फिल्म का ये गीत सुना।

फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं बॉर्डर टू फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार ने, प्रस्तुत है ये गीत।

0: साथी हूँ विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाज़ में बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आजा नचले फिल्म से। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान ने। प्रस्तुत है ये गीत।

0: साथियों, राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में आजा न चले फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी से। इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और नीति मोहन ने। प्रस्तुत है ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म खाकी से, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। प्रस्तुत है ये गीत।

साथियों, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में खाकी फिल्म के इस गीत के बाद अगला और अंतिम गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म माय नेम इज़ खान से। इस गीत को गाया है राहत फ़तेह अली खान ने।

श्रोताओं, माय नेम इज़ खान फिल्म के इस गीत के साथ ही गाने नए तराने नए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के शिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

ये आवाज थी तलत महमूद की और कलाम था एहसान मीरठी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज थी और फिल्म का नाम था मिर्जा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा गुलाम है ये, आवाज भूपेंद्र की और फिल्म

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

पेशी खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में, फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म शंकर हुसैन की इस गजल के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में इस समाज

समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही और बहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों, ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना। कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि जहां बाहर है वहां तुम चले जाओ, जहां खुशियां हैं वहां चले जाओ पंछी, क्योंकि यहां तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।

0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: जी हाँ, मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूनी ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहां तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहां तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है और पंछी के माध्यम से कवि ने ये दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बाबुली।

जी तो दोस्तों, मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर, जो कि 1974 की फिल्म है, उसका एक गीत है। कौन सा बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका हैं, शशि कपूर और मुमताज के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहां तक गीत की बात है, लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है। जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं, जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप हैं। और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हों, लेकिन जो प्यार है, बीच का प्यार है, वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है, वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है, और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाजी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम के। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

छाएगी, मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, दर्द बन के छाएगी। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए

0: तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

0: बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है, सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार

0: हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

कार्यक्रम में अब सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम एक साल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री के साथ पांच अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल

शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। श्री चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। राजधानी जयपुर में आज लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला हो रही है। इसमें नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम तथा दिव्यांग कानूनों पर मंथन किया जा रहा है। बिड़ला सभागार में हो रहे इस कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने तथा नए कानूनों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े तारागढ़ किले और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल इस बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार इस किले और क्षेत्र के समग्र विकास तथा संरक्षण की व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज एक और कल दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए दो स्तरीय सुरक्षा जाँच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जाँच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 14 और 15 मई को चलाया जाएगा। दो दिन के इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा कानून और आत्मरक्षा के तरीकों के साथ महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद मीणा ने बताया कि अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं से अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत कालिका टीम और निर्भया स्क्वाड को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीमें सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अदम्य साहस और वीरता के पर्याय महाराणा प्रताप को नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का दौर बना हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में कल तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आज भी इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट बताया है। वहीं कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला। नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और सवाईमाधोपुर में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चली और हल्की बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान में आज भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम

0: शेखर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनाम ही नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है।

ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मोह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मोह मोह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और उस सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहाँ नृत्य कर रही हैं, उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आजाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियां इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का एक गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए, गली गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है, और कई कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था, आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज्यादा मिले तो ज्यादा मजा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफर। हमारे साथ इस सफर में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है, और यह आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है, इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटापटा में बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है, बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं। इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है?

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है। अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संघ हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक संगीतमय प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता

ही है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है, मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये, और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है, और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला ये है कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है, ये गीत उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे, वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

जी तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी की।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चल लें। बिल्कुल चल लें, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीजों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तकिए से लिपटकर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सूने मन को छू लिया, जैसे बरसों से सूखी धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन सफलता की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ, सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबू लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज दी थी अमीरबाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज है। प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज है और उनका साथ अमीरबाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों और निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से, कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से।

0: बिल्कुल इबादत पढ़ी। और देखिए, आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया आप कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था। और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

कहा थी मुन्ने कहा थी मुन्ने कहा थी सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया कौवा भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया।

जी, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबू लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक। आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटो भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहाँ पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। फिल्म सफर के साथ मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है, है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि चुन चुन करती आई चिड़िया जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ये गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे। उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहाँ मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूँ, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजना रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी, जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे? अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूं सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दे इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
4: जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है, बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, हर जगह दोस्त हमारे साथ होते हैं। लेकिन क्या हर दोस्त हमारे लिए सही होता है? शायद नहीं। इसीलिए दोस्त चुने, मगर ध्यान से। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं? सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सैकड़ों, हजारों? लेकिन अगर रात 2 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप किसे कॉल करेंगे? बस यही फर्क है दोस्तों की लिस्ट और सच्चे दोस्त में। साथियों, दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं होती।

ये एक जिम्मेदारी होती है। दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। दोस्त हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी पसंद का आईना होते हैं।

दोस्त वो नहीं होता साथियों जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है दोस्त जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को जानकर भी आपको स्वीकार करे और जरूरत पड़े तो आपको सही रास्ता भी दिखाए। आज के समय में दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है, ऑनलाइन दोस्ती। लोग एक दूसरे से मिले बिना ही दोस्त बन जाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। हर प्रोफाइल के पीछे एक सच्चा इंसान ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी हम पूरी कोशिश के बावजूद गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, सबक लें और धीरे धीरे दूरी बनाएं। याद रखें, गलत दोस्ती कभी एकदम से नुकसान नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त मेहनत करते हैं, सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप भी वही करने लगेंगे। इसलिए दोस्त चुनना दरअसल अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना है।

साथियों, सवाल ये उठता है, कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन नहीं? सिंपल सी बात, जो आपकी बुराई में साथ दे वो दोस्त नहीं, जो आपकी अच्छाई, सफलता, शोहरत और उपलब्धियों से ईर्ष्या करे वो दोस्त नहीं, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका उपहास करे वो दोस्त नहीं, जो आपको खुद से दूर कर दे वो तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं। बात करें सच्चे दोस्त की, तो सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर ना कह सके। सच्चा दोस्त आपकी गलतियों पर आपको रोकेगा, आपकी हार में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी जीत में आपसे ज्यादा खुश होगा। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत करता है, आपकी बातों को समझता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा और हमेशा आपके साथ सच्चा रहेगा। साथियों, दोस्ती में भरोसा करने से पहले समय दीजिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। जिंदगी एक सफर है और सच्चे दोस्त इस सफर के साथी। दोस्त बनाइए लेकिन सोच समझकर, उनके साथ दिल से जुड़िए लेकिन समझदारी के साथ। जिंदगी को आसान बनाना है तो सही दोस्त का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन्ना।

0: आभार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, कृषि अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है, उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
2: India has traditionally

0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन, किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि

0: पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में

वो इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौज से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

कमरिया माँ लटक होई बे करी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कटक होई बे करी प्रेम का छुट्टी

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दें।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। विविध भारती
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का

मन चाहे गीत, ये पहला गीत सुनना चाहा है। ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सके। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और उनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा, तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
0: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
0: नंबर 11, पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
0: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
0: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा, आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
2: अगर

0: कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियादे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
1: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थे क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बढ़ जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गाँव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
2: कौन है वो?
1: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
2: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
1: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वो छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3000 या 4000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3000 रुपए भेजे हैं।
2: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
1: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
2: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाक खाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
1: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
2: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
1: ये लो, ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई श्रृंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई, मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे और

0: हाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते है ना।
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है साले, लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई शिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला, जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कह रहे, अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: शिंगारम, हाँ? शिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त,
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कुछ झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना, मेरा नाम सिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम, उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते, जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
3: वरना क्या होगा?
4: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें, इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ हाँ लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
3: सिंगारम ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं, तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
4: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ।

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,

0: 3,000 रुपए भेजे हैं, यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए, और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए, 100-100 रुपए के 30 नोट हैं, अच्छी तरह गिन लीजिए, और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ, तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: अरे अरे अरे, जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारा? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी ना पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।

0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जी जी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम
0: अरे अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जी जी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जी जी। भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुखती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगे।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे, वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जी जी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे, मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं बाघ थोड़े ही हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है?
3: देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है, रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा।
3: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका

0: कहकर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना तुम मुझसे ही शादी करोगी।
1: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
0: अच्छा?
1: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकूंगी।
0: अच्छा ये बात है।
1: छोड़ मैं
2: जहाँ कोई नहीं बताएगा तुझे। तीन बार एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
0: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
2: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊ तो हाल फेर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने?
0: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूं, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
1: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
3: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
1: जी इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
3: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
1: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
3: हाँ हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
1: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
3: ओह तो तुम्हारी माँ नहीं है?
1: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं और वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
3: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
1: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
3: हाँ हाँ रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
1: अरे अरे बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
3: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने। चली गई, कितनी सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब उसका मंगेतर है तब पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूं, अपनी माँ से मिलना चाहता हूं, उससे बातें करता हूं तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूं। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था।
4: माँ जी।
5: कौन?

0: आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
1: अम्मा जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
0: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे? बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
1: अरे ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
1: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
0: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
1: मैं लाता हूँ। दवाई
0: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
1: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
0: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
1: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
0: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
1: लो माँ।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: पड़ाला पिकलाए अम होनी तबग पड़ाला पिकलाए अम्बा।
3: और ये हिंदी गाना
2: हो पंख होते तोड़ आती रे।
3: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
4: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
4: क्या बात है,
5: बहुत बहुत शुक्रिया।
4: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई,

0: जी
1: तो हम तब से बात शुरू करें
0: जी
1: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
0: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे,
1: जी
0: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ
0: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे,
1: जी
0: ये मेरा
1: जी
0: नेचर नहीं था।
1: हाँ
0: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली।
1: हाँ हाँ
0: तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं
1: जी जी
0: उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं,
1: जी
0: राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: वाह
0: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे, तो
1: हाँ
0: एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके,
1: जी जी जी
0: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए, बहुत
1: हाँ
0: यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम,
1: जी
0: क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह।
0: जी,
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें
0: पहला
1: का?
0: शो 1975 14 अप्रैल,
1: जी
0: जो दिन गुड़ी पड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पड़वा के
1: बिल्कुल
0: दिन,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है।
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता
0: मुहूर्त
1: है।
0: माना, तो
1: क्या बात
0: हमारे एक
1: है।
0: 3.5 मुहूर्त बोलते, अच्छे जिस
1: हाँ
0: दिन, उनमें पड़वा बहुत अहमियत रखता है,
1: जी
0: गुड़ी
1: जी
0: पड़वा।
1: क्या बात है।
0: जी
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
0: हाँ,
1: हैं।
0: फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ, जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्ना दा के साथ गाना था,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि
1: जी
0: मन्ना दा
1: जी
0: के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा सांगा कोणा से, वो जो गाना है
1: जी
0: मुझे देखते ही पप्पा सांगा, छोटे बच्चे भी पप्पा सांगा कोणा से। मुझे याद है छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी,
1: जी
0: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोना चाहिए, ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे बोली
1: अच्छा।
0: तुम तो मेरे लिए गाओगी, तो बोले हाँ
1: ओ
0: जरूर गाओगी।
1: क्या बात है।
0: बहुत मजा आया उस
1: वाह
0: दिन
1: वाह।
0: बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
0: जी
1: हुआ,
0: जी
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: लिस्ट
1: आपको
0: बनाई
1: याद
0: थी,
1: है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए,
1: जी
0: क्या अजीब दास्तां है ये,
1: हाँ हाँ
0: इस तरह
1: हाँ
0: के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल। तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ
0: हाँ
1: आपने
0: जी
1: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
0: हाँ जी
1: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
0: जी
1: आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है।
0: राइट।
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो
1: हाँ
0: बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो जो
1: ओह क्या बात
0: आई
1: है।
0: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
1: अलग अलग
0: गाना
1: गायिकाओं ने अलग
0: है।
1: अलग
0: हाँ
1: मौके पे इसे
0: ऐसे मैं
1: गाया है।
0: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
1: हाँ
0: अलग अलग
1: हाँ
0: गायिकाओं के गाने हुए,
1: जी
0: उसकी
1: जी
0: झलक,
1: हाँ
0: उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं,
0: जी
1: मेरे
0: जी
1: पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई,
0: अच्छा
1: मुंबई,
0: अच्छा मुंबई में ही,
1: गिरगांव में, गिरगांव
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना
0: जो
1: भी वहां
0: खास
1: था।
0: मुंबई की
1: सब
0: जिसे कहा।
1: चाल थे सब
0: जी
1: ऐसे,
0: जी जी जी
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था।
0: हाँ हाँ
1: किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर के
1: आती
0: सब
1: थी,
0: काम
1: सब
0: किया करते
1: मिलकर
0: थे।
1: काम करते थे,
0: वाह,
1: बहुत मजा आता था। लेकिन
0: हाँ
1: पूरा
0: हाँ
1: एक चाल कुटुंब जैसा था,
0: जी
1: और सब सब गणपति दिवाली सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और
0: जी
1: सब
0: जी
1: लोग मजे कर रहे हैं, बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में 4 आने की चाय कभी नहीं पी जाके,
0: अच्छा
1: लेकिन
0: हाँ
1: घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल इतना अच्छा, सकस खाना मिलता था घर
0: अच्छा
1: में।
0: अच्छा
1: बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को,
0: जी जी
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था, तो
0: हाँ
1: बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था,
0: जी
1: मुझे
0: जी
1: गाने तो पसंद थी मेरी, तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे,
0: अच्छा
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में,
0: अच्छा
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे
0: जी
1: और
0: जी
1: गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे,
0: ओ
1: अगर दादर में क्लास होता
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: बहुत ही स्कूल में था, और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का,
0: अच्छा
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
0: वाह
1: पहली बार मैं बम्बई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि
0: जी
1: वहां म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था
0: हाँ
1: दिल्ली में,
0: हाँ
1: तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा।
1: संगीत शारदा,
0: जी जी
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
0: ओ
1: जी मेरी
0: अच्छा
1: आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: पुरुष के गायक के लायक थी, और
0: अच्छा
1: हाइट भी अच्छी थी,
0: जी
1: तो मैं
0: जी
1: कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
0: जी जी जी
1: नारद का रोल किया है स्कूल में, तो
0: हाँ,
1: स्कूल
0: चूंकि ये महिला
1: के
0: विश्वविद्यालय है
1: महिला
0: तो
1: नहीं,
0: सारे।
1: वो ये स्कूल की बात कर रही हूँ,
0: अच्छा
1: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था,
0: अच्छा
1: तो वो हमने उधर किया
0: ओहो
1: यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
0: हाँ
1: दिल्ली गई यूथ
0: क्या बात।
1: फेस्टिवल के,
0: अच्छा अच्छा
1: बाकी
0: अच्छा
1: फ्रेंड्स वगैरह थे
0: हाँ
1: साथ,
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं, ऐसा हुआ था,
0: क्या बात है।
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर
0: सके?
1: जरूर,

0: वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: नहीं करती,
0: पुरुष पर तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
1: राइट, राइट।
0: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है कहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है और 58 को शादी हो गई, 16 साल की। तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में, तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
0: और
1: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब जिजिक होती है कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर, और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
0: अच्छा।
1: तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी कि हमने चलेगी
0: दौड़ेगी
1: जाऊंगी कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा।
0: क्या बात।
1: और दो बेटियां, एक 4 साल की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है
0: जी जी,
1: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
0: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं,
1: मराठी में गाने थे
0: जी जी।

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट
1: पहले
0: इंडीज के बारे में बताया,
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ गई।
1: वशिष्ठ तरस साहब के साथ गए, फिर
0: हाँ
1: उसी उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी,
1: प्रमोटर अगली बार,
0: हाँ
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी जी
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया
0: अच्छा
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों
0: जी
1: के लिए,
0: जी
1: तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
0: हाँ
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
0: जी जी
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम, तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की
0: जी
1: रेंज और आशा भाई की रेंज, तो
0: हाँ
1: दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके,
0: अच्छा
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरियबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था,
0: अच्छा
1: दम मारो दम।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी,
0: जी जी
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते
0: अच्छा
1: थे तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने
0: हाँ
1: नोटिस किया
0: हाँ
1: उनको,
0: जी जी
1: इतने बड़े, बहुत बहुत ही बड़े सर।

0: गायक कलाकार लेजेंड्स है, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती है वहां शेर कैसा है इधर उधर ऐसा घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते
1: जी
0: थे।
1: जी
0: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
1: जी
0: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा। और एक बार स्टेज पे गए,
1: हाँ
0: छूट गए फिर।
1: हाँ
0: मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि अपने तीन चार गाने गा के ये
1: हाँ
0: लोगों को सामने से सुनते बैठू,
1: हाँ
0: बहुत ही भाग्य था
1: क्या
0: मेरा
1: बात
0: इस
1: है।
0: बारे। रफी साहब
1: मगर
0: को
1: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
0: डुएट नहीं गाए।
1: नहीं गाया। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
0: जरूर
1: सुने तो कौन सा
0: जरूर।
1: होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, वो दूसरों
0: मतलब
1: के
0: टीका टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों का टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: वो हो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी जी
1: तो ये जिनको मालूम नहीं है कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां हैं,
0: जी,
1: तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी।

0: राधा जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में, कि अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
1: जी
0: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
1: अच्छा
0: अनुभव एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
1: जी
0: प्रोग्राम
1: जी
0: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा
1: अच्छा
0: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
1: हाँ हाँ
0: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला कि वो लिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में,
1: हाँ
0: मेरी
1: अच्छा
0: सब सहेलियां मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
1: ओहो
0: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता है,
1: क्या बात है,
0: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
1: सोशल मीडिया
0: तो
1: पर,
0: सोशल मीडिया पे,
1: ओहो हो
0: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
1: क्या
0: हूँ।
1: बात है।
0: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
1: हाँ
0: वो तुम तुम्हारा करके गाती हो। वो
1: हाँ
0: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
1: जी
0: पहले
1: जी
0: गाने,
1: जी
0: अभी नई आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक
1: हाँ हाँ
0: जाती है।
1: हाँ
0: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
1: बराबर
0: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
1: जी
0: क्लासिकल
1: जी
0: म्यूजिक का।
1: हाँ
0: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
1: जी
0: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
1: ओहो
0: हारमोनियम पे सिर्फ
1: क्या बात है,
0: भेजे।
1: अच्छा
0: कभी
1: अच्छा
0: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके
1: जी
0: उसके साथ
1: जी
0: गाए,
1: जी
0: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
1: जी
0: मुझे भी
1: जी
0: अच्छा लगता
1: हाँ,
0: है।
1: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
0: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
1: अच्छा अच्छा
0: याग्निक का एक गाना गाया है शायद, अलका
1: हाँ हाँ
0: याग्निक का,
1: अच्छा,
0: मोह मोह के धागे
1: मोमो के धागे दम लगा कर है इस फिल्म का
0: दम
1: गाना
0: लगा के है
1: है।
0: शायद
1: जी
0: उसका
1: जी ये
0: है।
1: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
0: हाँ,
1: हारमोनियम पे,
0: मोह
1: तो
0: मोह के है। और
1: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना है, ये आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या? नकल नहीं, किसी
0: नकल किसी की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं,
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद।
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना
1: है? तो अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था,
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है, मतलब शब्दोच्चार या कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी उनकी तरह से, तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप,
1: नॉट नकल करने के हिसाब से नहीं आता था।
0: जी जी,
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों की लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं, ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी
1: रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही हूँ।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव,
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियों के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी,
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे गली चौड़े में।
0: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है, क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना
1: बहुत
0: कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक, लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकुते, फिर अपने गले से नहीं, तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज नॉट, मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ जो वैरायटीज वो करती हूँ। बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो ओरिजिनल है पहले वो
1: तो गाओ, नकल नहीं आती उसमें, लेकिन उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है, और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
0: बिल्कुल सही।
1: तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
0: जी जी,
1: वो क्यों करते थे इतना?
0: बिल्कुल
1: ऐसे गाते थे ना।
0: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं, आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र। तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
1: एक शो किया बड़ौदा में।
0: अच्छा,
1: बड़ौदा में मन्नदा ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है,
0: जी, जी।
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, तो फ्लैट लगेगा और भाव नहीं आएंगे उसमें। तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है, किसी के आवाज में, तो मैंने मन्नदा को पूछा कि मन्नदा ये कैसा लाने का अपने आवाज में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ। अच्छा। और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके।
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि ज्यादा नहीं करना, लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में। बहुत ही अच्छा। उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
0: जी जी,
1: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
0: जी जी,
1: बांबू छा वना च झ झ बहुत से बांबू छा वना झरिया

0: माझ्या काठी,
1: येशील
0: सजणे सजणे माझ्याच पाठी.
1: बिल्कुल, उनके लिए टंग ट्विस्टिंग बहुत बहुत.
0: तीन बार हुआ ठीक, चार बार हुआ इतने बार. या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा. अन्ना बोले डरो डरो डरो, मैं कुछ करता हूँ. तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं उनको बराबर करके लाइन में.
1: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें.
0: हाउस ऑफ बैम्बू.
1: जी जी.
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर. Number 54 the जिसे मॉड्यूलेशन फोर की उसके कम करना, उसके ज्यादा फोर्स में गाना, वो भी डिपेंड करता है.
1: जी जी जी.
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर. हो बांबूचे घर बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळी शार. बांबूचे घर बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळी शार. बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला. झुलवित राहील पापा पापा तुला नी मला. नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर. नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर.
0: उनका तो क्या.
1: वाह वाह. मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं.
0: जी जी जी.
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है.
0: हाँ.
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए, जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने हैं.
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं.
1: बहुत सी.
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उसमें बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन.
1: वाह,
0: बहुत अच्छा. थोड़ा सुना दो.

0: सीने से लग
1: लग जाता
0: जाएगा
1: है तो।
0: तो, और कभी नन्ही सी बेटी बन के आ रहा था,
1: वाह वाह,
0: बहुत अच्छी
1: बहुत
0: लिखावट।
1: ही संजीदा गाना
0: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते संगीतकार।
1: जी। जी जी प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको
0: जी
1: मंच पर गाने का मौका
0: जी
1: मिला
0: जी
1: है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ
0: रफी
1: आपकी
0: साहब तो
1: यादें।
0: मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट
1: अच्छा
0: कॉर्नर है उनके।
1: अच्छा
0: उनके साथ बहुत सारे टूर किए,
1: हाँ,
0: साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए
1: ओहो
0: रफी साहब के
1: क्या
0: साथ।
1: बात। हाँ
0: और जो उनसे सीखा है ना,
1: जी,
0: मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी।
1: ओहो
0: हाँ, इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव।
1: वाह
0: और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक
1: जी,
0: पत्रकार परिषद थी,
1: हाँ
0: कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है,
1: जी,
0: लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते?
1: जी
0: तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना,
1: हाँ,
0: उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और
1: ओ
0: क्या करूँ, और किसी
1: क्या
0: का
1: बात,
0: किसमें हाथ क्यों डालूंगा?
1: विनम्रता की हद है।
0: हद है, हद है।
1: ओ
0: और इतने नम्र, दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो
1: जी
0: मैंने
1: जी
0: वो
1: जी
0: कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है,
1: हाँ
0: तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें
1: हाँ
0: तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
1: जी,
0: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी
1: जी,
0: है
1: क्या बात, वाह वाह।
0: बहुत अच्छा
1: अब
0: लगा
1: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं,
0: जी।
1: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
0: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे
1: हाँ
0: सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो
1: विक्टोरिया
0: मिल
1: नंबर
0: गए
1: 203।
0: हो,
1: हाँ जी हाँ जी
0: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
1: जी,
0: हाँ,
1: हंसते
0: हंसते
1: जख्म
0: जख्म,
1: जी,
0: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: हंसते
0: और
1: जख्म फिल्म
0: हाँ
1: का जी, बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
1: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब
0: जी, हाँ,
1: भी उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया,
0: क्या बात है,
1: क्योंकि माय हस्बैंड
0: जी,
1: उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा. मैं जो कर रही थी
0: हाँ,
1: उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था.
0: क्या बात,
1: बहुत,
0: बहुत,
1: एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ.
0: जी,
1: उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके
0: ओहो,
1: 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट्स बायपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है, और 2 किडनी स्टोन की. उस वक्त के रेजर वेजर कुछ लाया था,
0: जी
1: स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और
0: जी
1: करो जो.
0: जी जी
1: तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की.
0: हाँ,
1: डॉक्टर SD बापट करके दादर में है,
0: जी
1: उन्होंने
0: जी
1: किया.
0: हाँ,
1: और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था,
0: ओ
1: 8 दिन का टूर था, घर
0: अच्छा,
1: में सासू जी थी.
0: हाँ
1: लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया.
0: हाँ हाँ हाँ
1: प्री प्लान तो हमारा टूर था. तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा तो भर देंगे उनका.
0: अच्छा,
1: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: अच्छा
1: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं. मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे,
0: अच्छा
1: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ.
0: ओहो,
1: उस वक्त फोन बीन ये भी कुछ नहीं था, तो बीच
0: हाँ
1: में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो
0: हाँ
1: आधे पौने घंटे के बाद लगे. तो
0: हाँ
1: ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है,
0: हाँ
1: ऐसे बहुत सारे इंसिडेंस हुए
0: क्या बात,
1: जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है
0: हाँ,
1: वो
0: इतना
1: मैं लगा
0: सपोर्ट,
1: दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं,
1: बहुत
0: क्या बात,
1: बहुत, मैं तो बोलू आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ.
0: जी,
1: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए,
0: जी,
1: कंपटीशन में भाग लिए, फिर इस प्रोग्राम शुरू किए,
0: हाँ
1: फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे उनका
0: हाँ
1: साथ मिला,
0: जी,
1: उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए. बीच
0: हाँ
1: में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए.
0: जी,
1: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का,
0: जी
1: वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी
0: जी
1: कभी चढ़ कर, तो मेरा शुरू से लेके चढ़ता ही जा रहा है.
0: वाह वाह,
1: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के
0: हाँ,
1: उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ.
0: क्या बात है, परिवार की बात चली है तो
1: जी,
0: आपकी अगली पीढ़ी में,
1: मेरी
0: आपके
1: दोनों
0: बच्चों
1: बेटियां
0: में
1: मेरे साथ
0: नात,
1: गाती थी
0: अच्छा,
1: शो में शुरू से.
0: हाँ,
1: मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरे मेरा ही वक्तव्य में कंट्रोवर्स कर रही हूँ,
0: अच्छा
1: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना, वो
0: अच्छा
1: छोटी थी दोनों.
0: हाँ,
1: तो उनका जाते हैं उनके पास, मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी.
0: अच्छा,
1: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गया,
0: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते हुए
1: उन्होंने
0: देखा
1: गाते
0: सुना
1: देखा
0: है
1: तो उन्होंने
0: तो
1: वो
0: उनके
1: भी
0: अंदर वो
1: गाती
0: अपने आप,
1: और लोग पसंद भी करते थे. ऐसे
0: अरे
1: नहीं
0: वाह,
1: कि
0: क्या
1: कैसा
0: बात है,
1: क्यों आए या ऐसा
0: क्या
1: नहीं. और
0: बात,
1: हम तब, तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे. तो किसी
0: हाँ
1: ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे.
0: क्या
1: तो
0: बात है
1: बड़ी बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं ये.
0: क्या बात है, क्या बात,
1: वह
0: कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
1: बहुत बड़ा
0: क्या बात, जी,
1: कॉम्प्लीमेंट.
0: अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा,
1: हाँ,
0: ऐसा
1: हम
0: कोई
1: लोग
0: गाना,
1: तीन डुएट भी गाते थे,
0: जी,
1: वो मन क्यों बहका रे बहका वो है,
0: ओहो क्या
1: फिर
0: बात,
1: कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर
0: हाँ,
1: अन्ना जी का अपलम चपलम, वो उस पे डाल भी
0: क्या
1: बताता
0: बात है,
1: मेरे
0: क्या
1: शो में.
0: बात है,
1: ऐसे सब डुएट दो गाने हम लोग ने. तो
0: क्या,
1: वो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे.
0: वाह,
1: हाँ, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो, पंख
0: अच्छा
1: होती तो. लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो
0: अच्छा
1: में,
0: अच्छा अच्छा
1: बहुत लोगों को पसंद
0: तो क्यों
1: आता
0: नहीं
1: था.
0: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं
1: अरे
0: को,
1: बाप रे.
0: हाँ? रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: डू पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती। विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ कदी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: सुनिए,
6: कहिए,
8: सुनिए एक खुशखबरी।
6: कहिए ना,
8: आ गया है मौका। सखियों

0: को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण अभी आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। अब युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा वाणी।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूं कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। जी हां दोस्तों, आज है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, यानी कि गुरुदेव जयंती 2026। 9 मई को इस प्रकार से ये दिन मनाया जा रहा है। ये दिन महाकवि, नोबेल पुरस्कार विजेता और आधुनिक भारत के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म के उपलक्ष में समर्पित है। ये पर्व विशेष रूप से बंगाल में उनके साहित्यिक योगदान, उनकी गीत और जनगणमन जैसी महान गीत की रचयिता के रूप में कलात्मक यादों के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, हर साल मई की शुरुआत में बंगाली कैलेंडर के बैशाख महीने की 25वें दिन इस दिन को मनाया जाता है। विद्यालयों और सांस्कृतिक केंद्रों में रविंद्र संगीत, नृत्य, नाटिका और उनके साहित्यिक कार्यों का पाठ किया जाता है। साथ ही टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ये जयंती मनाई जाती है। टैगोर एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दो देशों यानी कि भारत का जनगणमन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला के लिए राष्ट्रगान लिखा। निश्चित रूप से 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपियन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, पहले रुकते हैं ब्रेक के लिए।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद की तीखी आलोचना की है। इसे मानवता के लिए खतरा और संगठित स्वार्थ माना है। उन्होंने इस पश्चिम से आयातित एक यांत्रिक अवधारणा बताया है जो भारत की आध्यात्मिक एकता और मानवीय मूल्यों को नष्ट कर सकती है। टैगोर ने संकीर्ण और आक्रामक राष्ट्रवाद के बजाय विश्व बंधुत्व और सामाजिक विकास को प्राथमिकता दी है। श्रोताओं, मानवता से राष्ट्र को ऊपर उठाने को गलत बताया है। हम बनाम वे की संकीर्ण जो मानसिकता है उसमें बांटने वाला भी इस प्रकार के राष्ट्रवाद को बताया है। पश्चिम की नकल का विरोध करते हुए इसे विपरीत

पुस्तक बताया है। दोस्तों, रविंद्रनाथ का मानना था कि भारत की ताकत उसकी सामाजिक विविधता और सामंजस्य में है। साथ ही टैगोर के लिए सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि आत्मिक और बौद्धिक मुक्ति भी थी। वह एक ऐसे मानववादी दृष्टिकोण के पक्षधर थे जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर विश्व एकता को बढ़ावा दे सके। निश्चित रूप से आज का दिन उन्हें समर्पित है और उनके आदर्श हमें सिखाने को प्रेरित करते हैं और हमेशा सीखते हुए आगे बढ़ने को भी। दोस्तों, अब समय हो चला है आपके पसंदीदा सेगमेंट फोन करें गीत सुने के तहत। हमें पहली फरमाइश प्राप्त होती है अनूप सिंह जी अलाय से। सुनते हैं दोस्तों राजा और रंक फिल्म का ये नगमा।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, हमारे अगले फरमाइश करता है मारवाड़ मुंडवा से राकेश। इनकी फरमाइश आधारित सुनते हैं ये गीत।

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, हमारे अगले श्रोता हैं लोहारपुआ नागौर से दिलसाद अहमद। सुनते हैं इनकी फरमाइश आधारित धर्मवीर फिल्म का ये गीत।

श्रृंखला में अगला कॉल हमें प्राप्त होता है रून खजवाना से सुकोनी अली का। सुनते हैं दोस्तों इनकी पसंदीदा रीत खानदान फिल्म का ये गीत।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दोस्तों फोन करें गीत सुने की।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अगले हमारे फरमाइश करता है मोहम्मद याकूब मोहम्मद साहिल तिगरी बाजार नागौर से। इसके साथ ही हमें फरमाइश प्राप्त हुई है अल्ताफ ककू वालों की पोल से। सुनते हैं दोस्तों इनकी पसंद आधारित उपकार फिल्म का ये नगमा।

दोस्तों, इस गीत को पसंद किया था कक्कू गांव से अल्ताफ ने। अब अगले हमारे फरमाइश करता हैं गांव भदवासी उम्मेद सिंह। सुनते हैं सेहरा फिल्म का इनकी पसंद आधारित ये नगमा।

दोस्तों, हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं ए रोड नागौर से मोहम्मद फाजक। हम सुनते हैं इनकी फरमाइश आधारित ये सॉन्ग।

दोस्तों हमारे अगले फरमाइश करता हैं गांव इनाना से संजय। सुनते हैं सुल्तान फिल्म का इनकी पसंद आधारित ये गीत।

प्रोग्राम में फरमाइश करता है, चंपा सर करनू से प्रेम कुमार, नागौर से इकबाल, लोहारपुआ नागौर से मोहम्मद हसन, राठौड़ी कुआ नागौर से तमन्ना। तो समय अभाव के चक्कर में आप लोगों की जो गीत हैं उनको हम आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाए हैं, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आने वाले प्रोग्राम्स में आपके गीतों को ज़रूर शामिल किया जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ आज का समय हो चला है समाप्ति की ओर। आपकी दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युवावाणी कार्यक्रम अभी युवा श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 बजे हैं। अब ग्रामीण बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम पणिहारी।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: देखो बेना, मन ही मिनक ने अंदर के सांसारिक बंधनों बांधे है, और मन ही सब बंधनों छुटकारो दिलावे। मन ही अज्ञानु ज्ञान की तरफ ले जावे। बस इरे वास्ते ही तो कहवे कि मन चावे तो कहीं नहीं कर सके। सिर्फ मन में ही मनन करने री शक्ति होवे, और जब अपने खुद पर दृढ़ विश्वास होवे तो आप मुश्किलों मुश्किल टाइम में भी हार नहीं माना। और इरे विपरीत अगर देखो अपनो मन खुद पर ही विश्वास नहीं करे तो मिनक छोटी सी विपत्ति में भी निराश होकर बैठ जावे। इर वास्ते दुख और सुख तो देखो सब पर पड़े, बस आप विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि हार और जीत तो देखो बस अपने मन के मानने ना मानने पर ही निर्भर हो। सिर्फ खुद पर विश्वास करने की शक्ति हुई मिनक असंभव ने संभव कर दिखायो है, और पराजय ने जीत में बदल दियो। जिया की देखो अकबर री विशाल सेना ने भी बस मन री शक्ति के बल पर माते महाराणा प्रताप बानी सेना ने नाको चना चपा दिया। और तो और बेना देखो कमजोर सा दिखने वाला अपना राष्ट्रपिता गांधी जी मन री शक्ति और खुद पर विश्वास के बल पर ही अंग्रेजा ने भारत निकालने में सक्षम होया। इरवा से बस ओ ध्यान रखो कि किने ही भी ओ मत के मंदो कि थे की भी नहीं कर सको, क्योंकि जको लोग खुद कहीं नहीं कर सके नहीं बे ही दूजा ने किया करे कि थे की नहीं कर सको। बस खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ता रहनो, और ओ ही सोचनो कि मैं ही कर सकूं, और ई विश्वास पर कायम रहनो, और सोचनो कि लोग चाहे मारे वास्ते मार माथे विश्वास करे या नहीं करे, पर मने खुद पर विश्वास है तो देखो एक दिन थे बेड़ा ही बन जाओ जेड़ा थे बनो जाओ। ई बात कोई फर्क कौन पड़े कि दूजा था ना ऊपर विश्वास करे या कोनी, सबों ज्यादा बस खुद पर खुदरो विश्वास होना जरूरी है नहीं? तो बेना देखो अब क्यों नहीं आप सुन लेवा एक प्यार सो गीत और।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तो बेना गीत तो था ना बहुत चोखो लागी हुई है नी। तो बेना देखो अपार तो गर्मी घनी पड़ रही है नी, और ई गर्मी में ठंडो पानी और ठंडी हवा बिना तो दिन काटनो बड़ो ही मुश्किल हो जावे। पर वो सब तो प्रकृति री देन है। जद प्रकृति आपने पे मेहरबान हुई, जद ही आपने ई गर्मी राहत मिली। पर आपा फिर भी देखो ई गर्मी री मारू बस नहीं रहे वास्ते कई तरीका अपने घर में अपनावा। ठंडी हवा वास्ते एसी, कूलर और ठंडा पानी और चीज़ा वास्ते वाटर कूलर, फ्रिज जड़ी कई इलेक्ट्रिक सामान घर में काम में लेवा है नी। जीरू गई है कि गर्मियों खुद रो बचाव कर सका। पर देखो जद आपा वो सामान काम में लेवा नहीं तो इरो सुख भी आपा जद ही गर्मी में पास का, जद की इरी साफ सफाई और रख रखाव आपा समय समय पर करता रहे। तो ऐ सामान गर्मी में कई साल तक अपने काम आता रही। यहाँ की मैंने देखो अपने हर घर में आजकल फ्रिज हो गए, वो अपने सबों ज्यादा काम भी आवे। इस वास्ते देखो अपने इरी सार संभाल भी रखनी बहुत जरूरी है। फ्रिज ने समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। जीर वास्ते फ्रिज की देखो आइस बॉक्स में ज्यादा ठंडक होने की वजह कही है कि बिर में बर्फ जम जाया करे। इस वास्ते सप्ताह में एक बार बिना डिफ्रॉस्ट को बटन जरूर दबा देना। जीरू की कही है कि फ्रिज में जमियोड़ी बर्फ गल जावे और पानी बनकर फ्रिज के लारे लागियोड़ा डिब्बा में जाकर सूख जावे। और अपनी कई बहना हुए कि जकी की देखो फ्रिज ने गर्मी जाने पर बंद कर देवे कि सर्दी में अबीरी काई जरूरत है। तो देखो बहना एड़ो कभी भी नहीं चेक करना चाहिए क्योंकि इरू फ्रिज को कंप्रेसर खराब हो जावे और बीर गैस खत्म हो जाया करे। और कभी अगर आपा देखो ज्यादा समय वास्ते बारे जा भी रिया हाँ और घर बंद रहने की परिस्थिति में फ्रिज बंद करनो पड़े तो भी देखो हमेशा पहला अपने कही है फ्रिज की साफ सफाई करके इरे सारा हिस्सा ना सुखा के पहुँच के ही बंद करनो चाहिए। नहीं तो देखो इरो गीलो रेवन के एवज में कई बार फ्रिज में फफूंदी आ जावे और कई जगह तो जंग भी लाग जावे। इर वास्ते फ्रिज ने चाहे चालू रहे या बंद, गीलो तो देखो कदी भी नहीं रखनो। और फ्रिज में देखो आप कई तरह की खान पीन की चीज़ा भी रख सका, जगह की खुशबू एक दूसरा मायने आन लाग जावे साथ फ्रिज में भी आवे है नी। इर वास्ते देखो आपने फ्रिज में एक नींबू काट कर रख देनो, जगहों की बात खुशबू नहीं रहे। फ्रिज की देखो बोतलां, सब्जी बॉक्स, बर्फ चैम्बर सबकी समय पर सफाई भी करता रहना। और एक खास बाथरूम भी देखो जरूर ध्यान रखना कि लाइट जाने पर हमेशा फ्रिज बंद कर देना चाहिए क्योंकि कई बार बहना कहीं हुआ है कि लाइट वोल्टेज इतो तेज आवे कि अपने इलेक्ट्रिक सामान शॉर्ट सर्किट हो जावे और बढ़ जावे। और वोल्टेज कम बत्तो होवे तो इन्हें बी टाइम भी फ्रिज ने कहीं है कंप्रेसर खराब हो जावे। इस वास्ते आपने पहला ही बिना फ्रिज लाइट ने फ्रिज ने बंद कर देनो और लाइट आने पर ही चालू करनो। तो मैंने आज तो देखो मैं थाना घनी काम की जो बात बता दी है नी, अब क्यों नहीं आप एक प्यारो से गीत और सुन लेवा। तो लाओ सुनो गीत।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो बेना, आपने आज रे कार्यक्रम रो समय हो गयो है पूरो। अब थानी बहन रीता चारी ने दो सीख आपा करा। राम राम।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई

0: की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, सुनिए शिकार फिल्म से मोहम्मद रफी के स्वर में।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत, आशा भोसले का गाया मेरा नाम जोकर फिल्म से।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर। इसमें आप पहले सुनेंगे भगवान दास महावर की गाई लोक रचना और उसके बाद आप सुनेंगे लादूलाल नायक की गाई लोक प्रस्तुति।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम।

आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youtexperedsnagaur@gmail.com पर, और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

भगवान दास महावर और लादूलाल नायक की गाई लोक रचनाएं अभी आप माटी के स्वर के इस कार्यक्रम में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गईं, जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में आपसी समझौतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों का समय भी बचता है और पक्षकारों को त्वरित न्याय भी मिलता है।
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें कि लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशिष्ट सचिव रश्मि नवल ने आकाशवाणी को बताया कि इस लोक अदालत में 7.5 लाख से अधिक प्रकरण रेफर किए गए।
2: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में 3 का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त DLSAs राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नई न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक अभियोजकों से नए कानून पर विस्तार से चर्चा की गई और नई प्रणाली को लागू करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं पर मंथन किया गया।
3: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें PP और APP की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा, निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
0: कार्यशाला में राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने लोक अभियोजकों की समस्याओं को सुना और उनके प्रभावी समाधान पर चिंतन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांगजन मामलों और नई आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा है कि आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मसीह ने कहा कि बदलते समय के

0: साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने तकनीक के उपयोग में न्याय के हितों का उल्लंघन नहीं करने की बात कही। डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और सुबोध लॉ कॉलेज की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविदों, न्यायविदों और शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान कार्यों को लेकर एक एमओयू भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीलंका के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस ने न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का ये ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, राष्ट्रहित और जनविश्वास की सशक्त अभिव्यक्ति है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आज जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और ICU जैसे संवेदनशील स्थानों पर लापरवाही बरतने पर संस्थान प्रभारी और यूनिट हेड सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। श्रीमती राठौर ने बताया कि अस्पतालों में संक्रमण को रोकने के लिए नियमित रूप से स्टरिलाइजेशन किया जाएगा। उन्होंने सीनियर डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और दवाओं के भंडारण के मानकों का पालन करने को कहा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने के प्रकरण में राज्य सरकार ने एक चिकित्सक सहित 2 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही UTB पर कार्यरत एक चिकित्सक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 2 अन्य चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कोटा पहुंचकर अस्पताल का दौरा किया। इस दल का नेतृत्व कर रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की स्थिति खराब होने के बावजूद भी वहां सर्जरी की गई, जिसके कारण मरीजों में संक्रमण फैला। श्री मीणा ने जिम्मेदार उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग और स्वाभिमान युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। भरतपुर में इस अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाद में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। वहीं पाली जिले के जवाली में रैली निकाली गई और रक्तदान शिविर लगाया गया। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी जिले भीषण लू की चपेट में हैं, वहीं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। आज जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। कुछ अन्य पश्चिमी जिले भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। दिन के साथ साथ पश्चिमी जिलों में रात का पारा भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीती रात फलोदी में न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जोधपुर में पारा 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने के आसार हैं।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5

0: दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले दो चार दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत कार्मिकों के प्रशिक्षण का दौर जारी है। इसी कड़ी में डूंगरपुर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के तीसरे बैच का 3 दिन का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। तहसीलदार उज्जवल जैन ने बताया कि ये डिजिटल जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 16 मई से 14 जून तक मकानों के सूचीकरण का काम किया जाएगा, जबकि मुख्य जनगणना अगले साल फरवरी में होगी। प्रशिक्षण में मोबाइल ऐप के उपयोग, लेआउट मैप बनाने और स्वगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रगणकों को फील्ड में मोबाइल के जरिए डेटा दर्ज करने का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। वे आज जयपुर में शहर की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। श्री मित्तल ने विशेष रूप से महिला और बाल अपराधों सहित SC ST से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास पैदा करना होना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज भूगोल विषय की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में कुल 76.43% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 3,95,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,02,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। सृष्टि रचियता जगत पिता ब्रह्मा की पवित्र नगरी और अपनी जायकेदार कढ़ी कचौरी के नाश्ते के लिए प्रसिद्ध अजमेर जिले की चिट्ठी में हम आपको हालिया खबरों, ताजा घटनाक्रम और जिले की मुख्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे। चिट्ठी की शुरुआत SI भर्ती परीक्षा 2021 की बात के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। ये भर्ती परीक्षा इस साल दोबारा से सितंबर महीने में संभावित है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि अब केवल वही 3,83,000 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे जो पहले दोनों पेपर में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। संशोधन की यह प्रक्रिया 16 मई से 30 मई तक चलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल देखते रहें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिले में इस परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 8,900 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने पारदर्शी और सुचारू तरीके से परीक्षा करवाने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। जिले में 16वीं राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया 2027 शुरू हो गई है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वगणना

0: कर सकते हैं। वहीं 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे। जिले में जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले महीने अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई वेबसाइट का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक दृष्टि विषय पर विकसित की गई है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल ने नई तैयार वेबसाइट की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालय की सभी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अभिभावकों को सभी शैक्षणिक जानकारियां तथा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय अब जीरो कार्बन कैंपस हो गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों एक समारोह में 37 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की। ये कार्यक्रम अजमेर के वैशाली नगर बधिर विद्यालय में आयोजित किया गया। स्कूटी मिलने से इन दिव्यांगों को जीवन यापन, रोजगार और कामकाज में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने 118 जरूरतमंद व्यक्तियों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की भी सौगात मिली। चंद्रवरदाई नगर योजना में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले JNIT नर्सिंग स्कूल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में शिलान्यास किया गया। साथ ही मानसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विधायक श्री देवनानी के प्रयासों से केसरबाग पुलिया को चौड़ा और ऊंचा करने के काम के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति मिली। वहीं 3 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइन नाले का काम भी किया जाएगा। जिले की राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 बालकों और 16 बालिकाओं को जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। अजमेर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई गया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय राधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाई पालना करण रा हुकम दीना। और प्रदेश में आए घनखट होना तेज गर्मी रो असर आवता दिना पारो और चढ़वा रा आसार। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। विधिक सेवा प्राधिकरण री ओरू आज देश भर माय साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लकाईची। प्राधिकरण रा सदस्य सचिव संजीव पांडे आकाशवाणी समाचार ने बतायो कि लोक अदालत में राजीनामा लायक मामला ने सुनवाई करी जावे है। वह कहो कि इन अदालतों रो टेम बचबा सागे पक्षकारा ने तुरंत न्याय मिले है।
2: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें की लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजोल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको की आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इस लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
1: राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के विशिष्ट सचिव रश्मि नवली आकाशवाणी ने बतायो कि आ लोक अदालत में 7.5 लाख बत्ता मामला सुनवाई सारू रेफर करी चिया।
3: मान

0: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो तीन का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में तीन बेंचेस का गठन किया गया और समस्त डीएलएसएज राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
1: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि नई न्याय संहिता रो मकसद सजा देवण री बजाय न्याय दिलावणो है। वे आज जयपुर में राखी जी लोक अभियोजकां री राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहा है। इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मेघवाल कहो कि कार्यशाला में लोक अभियोजकां सागे नुआ कानूना रे बारा में विगतवार चर्चा करी जी अरवान लागूकरण में आ रही परेशानियां रे बारा में विचार करी जियो।
2: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें पीपी और एपीपी की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
1: कार्यशाला में राज्य रा विधि मंत्री जोगाराम पटेल ही लोक अभियोजकां री समस्यावां सुनी अरमारा निपटारा रा बारा में विचार कीनो। कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांग जन नु जुड़िया मामला और नुआ आपराधिक कानूना ने असरदार तरीकों लागू करण रा बारा में खास तकनीकी सत्र राखी चिया। सुप्रीम कोर्ट रा जज न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम लेवण माथे जोर तीनो है। वह आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय मुद्दा माथे राखी चिया दो दिन रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। न्यायमूर्ति मसीह कहो कि बदलता जमाना सागे नवी तकनीक काम लेवनो जरूरी है, पर तकनीक काम लेवन रे दौरान मानव मूल्यां ने नजरअंदाज नहीं करया जा सके है और न्याय राहितां री अनदेखी नहीं वेवनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और एक गैर सरकारी कॉलेज का नींव रख्या चया इन सम्मेलन में देश भर रा शिक्षाविद, न्यायविद और शोध करण वाला भाग लिनो। सम्मेलन में श्रीलंका रा पहली वाला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस न्याय व्यवस्था में तकनीक रा काम ने घणो खास बतायो। भारतीय जनता पार्टी रा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा मुख्यमंत्री बन गया है। कोलकाता रा ब्रिगेड परेड मैदान में राखी चिया कार्यक्रम में राज्यपाल आर एन रवि शुभेंदु अधिकारी ने पद और गोपनीयता री शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही शिरकत कीनी। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि पश्चिम बंगाल री जनता रो ओ ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, देश रा भला और जनता रा विश्वास री मजबूत अभिव्यक्ति है। ध्यानयोग है कि पश्चिम बंगाल में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी रो राज आयो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा सगला सरकारी अस्पतालों में अब इलाज जुड़िया सगला नियमों री कड़ाई पालना तय करी जावेला। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जयपुर में आला अहलकारा सागर मीटिंग कर इन बारा में हुक्म दीना। वह कहो कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू सरी खिठौना लापरवाही री सूरत में संस्थान रा प्रभारी और यूनिट हेड ने सीधा जिम्मेदार ठहराया जावेला। श्रीमती राठौड़ अस्पताल में संक्रमण रोकण सारू कीटाणु खत्म करण बाबत नियमित तौर काम करण माथे जोर दीनो। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑपरेशन रे जरिए जापो वेवण पाछे नवी मायडा री मौत वेवण और तबियत बिगड़वारा मामला में राज्य सरकार एक डॉक्टर समेत दो नर्सिंग कर्मचारियों ने मुअत्तल कर दीना है। ईसा गई यूटीबी माथे लागियोड़ा एक डॉक्टर ने नौकरी निकाल दियो चियो है और दो डॉक्टरों ने कारण बताओ नोटिस देर जवाब तलब करी चियो है। दूजिकानी चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल काल कोटाचार वाकया रो विगतवार जायजो लीनो और जरूरी हुक्म दीना। चिकित्सा शिक्षा विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो के मामला री शुरुआत

0: थी जांच माए चिकित्सा प्रोटोकॉल और प्रक्रिया माए गंभीर लापरवाही रीठा पण्या पाछे स्त्री और प्रसूति रोग विभाग रा यूनिट हेड डॉक्टर बी एल पाटीदार और यूनिट हेड डॉक्टर नेहा सिहरा ने कारण बताओ नोटिस दियो चियो है। इन वाकया पाछे कांग्रेस पार्टी वारा नुमाइंदा रो एक दल कोटा भेजो। राज्य रा पहली वाला चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणारी अगुवाई माए ओ दल अस्पताल रो दौरो कीनो। इन पाछे वे अस्पताल प्रबंधन माथे घोर लापरवाही रो आरोप लगाता थका कहो के ऑपरेशन थिएटर और जापा विवरण रा कमरा री खराब हालत रे बावजूद वठे ऑपरेशन करी जिया जिन कारण मरीजा माए संक्रमण फैल गयो। महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज वान श्रद्धा भाव सागर याद करिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए नमन करता थका कहो के महाराणा प्रताप रो त्याग और खुद माथे अभिमान युगा युगा ताई सीख देवेला। ये मौके भरतपुर माए शौर्य यात्रा निकाली ची। ये पाछे राखी जी संगोष्ठी माए महाराणा प्रताप री जबरदस्त हिम्मत और देशभक्ति री गाथावा याद करी ची। पाली जिला रा जवाली माई रैली निकाली ची और खूनदान शिविर लगाई चियो। प्रदेश माए जनगणना 2027 री तैयारियां रा तेत कर्मचारियां ने सिखावन देवन रो दौर चाल रियो है। डूंगरपुर माए प्रगणका और सुपरवाइजरां रा तीजा बैच रो 3 दिन रो सिखावन कार्यक्रम आज पूरो भियो। सिखावन रे दौरान जनगणना सारू मोबाइल ऐप काम लेवन लेआउट नक्शो बनावन और स्व गणना रा काम रे बारा माए विगतवार जानकारी दीरी जी। प्रगणका ने घर घर जार मोबाइल फोन रे जरिए डेटा दर्ज करन रो अभ्यास ही कराई चियो। ई दफा डिजिटल जनगणना 2 दौर माए करी जा रही है। राज्य माए इरा पहला दौर माए 16 मई 14 जून ताई मकाना री लिस्ट बनाई जावेला जबकि मुख्य जनगणना फरवरी 2027 माए करी जावेला। अरब मौसम प्रदेश रा अतुणी हल्का माए लू बाज रही है जबकि लंकाऊ उगनी हल्का माए आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। जैसलमेर बाड़मेर और फलौदी माए ऊंचो ऊंचो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। कुछ और जिला माए जबरदस्त तावड़ो पड़ रियो है वठे दिन सागे रात्रि भगती पारो सामान्य ऊंचो दर्ज करियो चार रियो है। बीती रात फलौदी माए 31.4 और जोधपुर माए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो के आवता दिना पारो और चढ़वारा आसार है।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी।
0: जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल पुलिस रा अहलकारा ने अपराधियां रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई करण और पीड़ित जनता ने तुरंत न्याय दिलावण रा जतन करण रा हुक्म दिना है। वे आज जयपुर माए शहर री कानून व्यवस्था बनाई रखण और अपराधा माथे काबू करण रे बारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। पुलिस कमिश्नर खास तौर महिलावां और बच्चों के खिलाफ होवण वाला अपराधा और अनुसूचित जाति जनजातियों जुड़िया मामला माए तुरंत जांच कर और असरदार कार्रवाई करण माथे जोर दिनो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री ओरों आज भूगोल विषय री प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांति सागर पूरी फेगी। राज्य रा 38 जिला माए फी ई परीक्षा माए 76.43% उम्मीदवार शामिल फिया। आईपीएल क्रिकेट होड रा तेत आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स बीच मैच फैला। वो मुकाबलो जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम माए अब थोड़ी देर पछे 7:30 शुरू फैला। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश माए आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। मोटी तादाद माए मामला राजीनामा निपटाई चिया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल

0: मां इलाज रा प्रोटोकॉल रिकरडायूं पालना करण रा हुकम दीना और प्रदेश मां घणखर ठोणा तेज गर्मी रो असर इंसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो नमस्कार
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर।
0: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुननिया है किसान भैया ने आपरे मांगलाल भाई और
4: ओम दूंदवाड़का राम राम।
3: हाँ ओम भाई घना घना राम राम। आपा देखो जद भी सोपाल दी नावा भाइयों राम राम भी करा और राम राम रे शागे देखो के भाइयां रे वास्ते कई है जी को काम रिया था यहां भी आपा तेवड़ पर आ रहा।
4: बिल्कुल।
3: तो आज जिया की आप सोपाल दिन आउंदा थका जी को और शुरू में इन बड़ बात करा नी कि आज भाइयों बात करा कि गर्मी री जूते। तो गर्मी री जूते माते जी को बात करा भाई देखो के बहुत ही फायदेमंद है गर्मी री जूते। और याद आयोडी टेमो टेम अबारे जी को गर्मी चले देखो जोरदार।
4: बिल्कुल। तो यहाँ के मंगलाल भाई आप गर्मी की जुताई की बात करिए ना तो आप देखें जो आपा का किसान भाई है ना चलो अभी तो जो को वर्तमान स्थिति चल रही है जके के महीने आपा के वहाँ अबार की जके के महीने देखो किसान भाई जगह खासा होशियार हो गया पर जका आपा के बडेरा भी वे भी देखो गर्मी की जुताई है जकी पहली देखो ट्रैक्टर और मशीनरी तो कौन होती पर ठंड पोर का या सुबह जल्दी ऊंटों भी जुताई करता तो गर्मी की जुताई जरूर करता
3: भाई जरूर करता क्योंकि अपन पुराना बडेरा की बात ले लियो या और कोई जी की पारंपरिक खेती पहली उनती इनकी अपन बात करा तो जिका तरीका या जिका उपचार जिका नया नया ई टाइप आप कह सका के अनुसंधान बे तो बी टाइम चालतार बी टाइम भी है जिको के आप अनुभव करता आप देखा हाँ तो ओम भाई गर्मी री जी की जुताई है ना वो एक एड़ो काम है जिकार अनेक फायदा है।
4: बिल्कुल।
3: इर मायने आप देखा हाँ तो मृदा जी की मिट्टी हुए अपनी बीरे मायने सूर्य ऊर्जा उपचार हुए और जिको का कीट और पौध रोग कारक है जी का बिंग मायनु नष्ट हो जावे। जल को अपवा है जी को रुक जाया करे खरपतवार नियंत्रण भी हुए। आप गर्मी री जुताई करदा तो जल के शोषण की क्षमता है जी की मिट्टी ज्यादा बन जावे और जी की खरपतवार आप बात करा भाई बिना मतलब रो जी को घास फूस उगे ना वो भी कम हो गए।
4: यानी कि आप पर जकी मिट्टी आप बताई कि जकी बंदुड़ी रह कौन खुल जावे और खुल जन देखो बीर महीने जकी सूरज की है ताप है जको भी लागे और हवा भी लागे भी देखो जका नीचे जका कीट है या जको आप धान नुकसान पहुंचा जानवर है ना बे है जका ई लाई के महीने बार लाई तो कितनी पड़े धन ठाई है
3: कल्डी पड़े
4: तो ई लाई के महीने बे नष्ट हो
3: जाए। बिल्कुल अच्छी बात। और बीरे सागे आप देखा तो जिकी आप आगे मूल फसल बामानी पाची खरीफ वाली भी खरीफ वाली फसल रे मायने जड़ा के मायने चौकी वृद्धि हुए और इरे सागे सागे आप यहाँ कह सका भाई पीड़क नाशिया का अवशेषा ने जी को तीव्र विघटन हुआ करे इर मायने है ना। अबे बात आवे के ग्रीष्मकालीन जुताई करा कद।
4: बिल्कुल।
3: जाहिर सी की बात है जब ताजी गर्मी पड़े तो ताजी

0: ਗਰਮੀ ਪੜੇ ਅਰ ਵੀਰ ਸਕ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਤੋ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਨਾ ਬਈ ਗ੍ਰੀਸ਼ਮਕਾਲੀਨ ਜੁੱਤੇ ਹੀ ਕਰੇ
1: ਕਰੇ
0: बरसात प्रारंभ हुए ना बीरू थोड़ा एक दिन पहली यहाँ की आप कह सका अप्रैल हूँ ले अप्रैल जून तक महीनो हिरवास्ते एकदम सर्वश्रेष्ठ है ना। अब बात करा तो आप जिका फायदा है भी फायदा रमाइने एक फायदो है कि हानिकारक कीटाणु बचा हुए और खरपतवार नियंत्रण हुए मृदा के मायने चोको वायुरु संचार हुए और जल अवशोषण की क्षमता है जिके के मायने वृद्धि हुए जड़ विकास रमाइने सहायक हुए मृदा संरक्षक रमाइने सहायक हुए मृदा संरचना रमाइने सुधार हुए है ना।
1: और आप मारवाड़ी भाषा में कह सका हाँ कि जबकि जमीन की निचली परत भी ना पा ऊपर लिया वहां ऊपरली परत ना है जबकि नीचे डाल देवा और निचली परत है ना जबकि ऊपर आए जाना देखो कि सारा कुछ जका आप अवशेष और एक कण बताया कि जबकि फायदेमंद है जबकि आप आके धान उगड़ में फायदेमंद है बह का बह है जगह सगड़ा का सगड़ा है जगह सक्रिय हो जावे।
0: बिल्कुल तो ए बात सीता ही जी आप करी के भाई गर्मी री गहरी जुतई रो कहीं कहीं फायदो है तो ओम भाई देखो के बात सीता तो आप भयू है जी को आप चौपाल दिन आवा जाना करते ही रहवा हाँ
1: बिल्कुल
0: है ना। और भी करा बात सीता लेकिन देखो के आज आप दोनों ही नाशा दौड़ में हा अबीरे कारण कही है कोई गाँव गाँव तेरे जाई जो को नहीं
1: और मेन जगह किसान भाई मिली जो भी
0: मिली जो को नहीं तो लारे शेख है जी को एक मुर्गी पालक हूँ बातचीत करी ही राकेश भाई बा बड़ी कामरी बातचीत थी भी टाइम भी मैं सुनी ही तो बा कामरी बातचीत भैया ने अबार भी बतावा तो सुनावा तो भैया काम आई
1: काम आई। और अबार जको है ना जको आप बताई जन गर्मी में जुते ही तो गर्मी के साथ साथ ही जन जुते ही के साथ साथ ही गर्मिया में ध्यान रखने की बात बेबी में आई
0: हाँ बेबी
1: क्योंकि मुर्गियां के है जो किया पालन पोषण कर और किया बारो रख रखाव करना
0: तो ऐ सगली बात चीता काई करी काई नहीं करी तो राकेश भाई री बातचीत है मुर्गी पालक मोहम्मद अली जी हूँ जी का कुमारी निवासी है तो बातचीत आप सुना और भाई करा पूछती
1: बिल्कुल जरूर
0: तो सुनो
2: भाया आज देखो एक भाई मिलिया है और बे है जिको अपने मुर्गी पालन करिया करे ब्याको करे तावड़ी राम राम सा
3: राम राम सा
2: काई नाम ऐसा और किसो गाँव है
3: नाम अपना मोहम्मद अली है और गांव है कुमारी गने
2: कुमारी
3: नागौर के नागौर का पाक थी गांव है कुमारी बासनी गांव है बाकी मेरा गांव है कुमारी।
2: अच्छा तो मोहम्मद अली जी आपने है जी को ओ मुर्गी पालन करता कितो टाइम हो गयो
3: आज तीसरा लोट है मतलब तीसरी साल होगी दो साल तो मैंने बीएस के कंप्लीट कर दिया तीसरी अब शुरुआत है 19 तारीख को मेरे बच्चे आ जाएंगे।
2: अच्छा तो आप है जी को ओ मुर्गी पालन क्या शुरू करियो कटी देख आया काई करियो
3: शुरुआत तो बैंड की वजह से करी था बैंड का कोई कारण मैं मुर्गी रखूं हमें कोई बात चली थी कभी मुर्गी हम क्या कमाई है क्या नहीं है बैंड ने बात करी थी मैं 5-4 मुर्गे रखूं और उसमें मैंने एक अंगूठी करवा ली 15,000 सोने की तो बाद में मैंने बैंड को मैंने बोला भाई तूने 5-6 मुर्गियां सोने की अंगूठी करवा ली है तो अपना 200,000 लिया थी क्या
2: सही बात है
3: ऐसे शुरुआत की थी मैंने।
2: तो पच्चे आप शुरुआत में किसी नस्ल की मुर्गिया लाया और अभी नस्ल की काई खूबी है मेरी
3: मैं सोनाली नस्ल लेना जो
2: कटु लाया
3: नस्ल मैं अजमेर लायो
2: कितनी लाया
3: मैं स्टार्टिंग में 225 लेना जो
2: 225 ले रहा
3: हां बस एक एक दिन का बच्चा ले लिया करूं एक दिन लिया करे एक दिन का बच्चा ये मिल लिया करे
2: तो सब 225 एक एक दिन का ही लाया कि बच्चा
3: हाँ एक दिन का ही मतलब एचरीस बिक लिया करे मशीन का मैंने इंटर रख दिया करे और एक साथ ही बच्चा निकल जा सब।
2: अच्छा तो पचे बे बच्चा है जिका आप बटू अजमेरू क्या ले रहे हैं गांव में
3: अजमेरू लेने है, एक मारे गांव को है वो पहले काम करे भी वो लेना है अभी पच मैं ले रही हूँ
2: नहीं तो। कि मैं गाड़ी में किसी गाड़ी में क्या ले रहा है
3: पर्सनल खुद गाड़ी लेने गयी मारा
2: हाँ तो पचे बीर मैंने पचे कोई जाड़िया में ले रहा कार्टून में लाया कई ले रहा है
3: वो खुद कहीं करिया करे एक बॉक्स हो जाएगा छोटा उस भी में नहीं वो 30-30 कर 60 या 90 एक बॉक्स में पैक कर दे दिया अपने वो अपना गाड़ी में रख पड़ा ले रहा उठू अपना दाणो मिले अजमेर में ही
2: अच्छा
3: उठ पहले ले लेगा दाना

0: हवा लिए, ऑक्सीजन गैस निकलने लिए, ऊपर भी जाली लगा दी थी थोड़ी बहुत,
1: अच्छा
0: और बाकी पूरी जाली बंदोबस्त पूरा करना पड़ा है, ताकि कहीं वो मिन्नी नहीं पड़ जाए, नोले नहीं पड़ जाए, नोले पड़ जाए तो पूरा अपने वो सबला बच्चा खा जाए, मुर्गियां मार लग
1: हाँ,
0: जाए।
1: वो ही क्यों भाई, सावचेती आपने रखनी पड़े। और
0: सावचेती पूरी रखनी पड़े पूरी।
1: और ज्ञान थे बतायो कि भाई दानो, अबे अबे भी दानो बट्टू लाओ, कैट नागौर में भी मिल जाओ दानो,
0: नहीं नागौर में नहीं, दाणो उठी लाना पड़े।
1: दानो बट्टू लानो पड़े। पचे दानो है जी को आखो दिन ने को के भरियोड़ा रखो के सुबह शाम देवो, क्या देवो बयान
0: नहीं
1: है
0: नहीं
1: दानो।
0: पहले स्टार्टिंग में तो 15 दिन, तो 10-15 दिन तो बंद आपको दिन नेगनो पड़े, सुबह नेक दो, दोपहर नेक दो, शाम के नेक दो, दिन में 4 बार नेगनो पड़े 15 दिन तक। 15 दिन बाद का मैंने 2 बार, पचे 3 बार कर दो, उसके बाद में थोड़ा बड़ा जो 2 बार कर दो।
1: पचे यहाँ के पानी की व्यवस्था करनी पड़े, पचे सियाड़ा में और उन्नाड़ा में काई व्यवस्था करनी पड़े खाना की, वो एक ही दानो है।
0: नहीं नहीं दाणो अलग अलग ही आएगा, 15 दिन का बच्चा, 20 दिन का बच्चा दाणो अलग
1: अच्छा
0: आवे,
1: सब
0: फिर
1: अलग
0: बाद में
1: अलग,
0: थोड़ा
1: हाँ अलग अलग दाना रे भैया।
0: अलग अलग दाना। बाकी यानी इसमें ज्यादातर कमाई हुई अगर फ्री रेंज के, मैंने जो अपने गांव का मैं रखा करना 10-15 मुर्गियां,
1: हाँ
0: वो फ्री रेंज हुई करे, ताकि अपना कुछ बचोड़ा कचोड़ा सब्जी जो है,
1: सब,
0: घर में
1: हाँ
0: कचोरी हो है,
1: बाजरी अपन अपन खुद
0: बाजरी
1: का
0: है,
1: धान रे खाई ले जनवा, आप यहाँ को
0: हाँ,
1: बचत हो जावे
0: और
1: अपन के
0: दाणों की
1: कोई।
0: बचत हो जाए।
1: हाँ और अपन के गाय और भैंसिया रखा तो ब्यांग भाड़ा में भी बेलटा जीव और छोटा मोटा चुगबो करे वजन भी फायदा हो जावे।
0: हाँ ब्यू नहीं, ब्यू ज्यादा मुनाफा हो है, ताकि वो दाना रो अपना खर्च लगे को नहीं, फ्री पॉकेट मोट हो जाए।
1: हाँ। एक और पूछूं कि आप बार कियो के भाई आप तीसरी लौटे तो ए जिका आप बे मुर्गियां का जिका बच्चा लाया बे बड़ा हो गया और बे भी अंडा दे दिया कि।
0: हाँ बाकी इसमें सिस्टम हो गया करे, मैं तो बच के ज्यादा रखा है ना, 100, 200, 400, 500 रखा बच्चा, 1000 बच्चा रखा, इस वजह से ना कुछ बच्चे नहीं, 6 महीने बाद खुलावा कहीं, अंडा तो 3 महीने बिके, इस वजह से वो क्या, जिसने मैं अंडा बच्चा ले रहा हूँ 1 दिन का, उसको टेम टेम देख के लेके आते हैं भाई, कितना महीना बाद में ये अंडा देगी, 5-6 महीना
1: अच्छा
0: बाद अंडा देना स्टार्ट कर दिया करे।
1: हाँ
0: बाकी सर्दी से 5-6 महीने पहले मैं बच्चा ले रहा करा, फिर 6 महीना मोटा करा, मोटा कर मोटा है बिजुन, सर्दी का टाइम आ जाए।
1: अच्छा अंडा है जी का सर्दी के मायने ज्यादा भी क्या करे
0: हाँ
1: पचे।
0: सर्दी में ही देसी अंडा बिके,
1: अच्छा
0: बाकी नहीं
1: देसी,
0: अंडा नहीं बिके,
1: हाँ तो पचे एक अंडा का कितना रुपया मिल जावे।
0: अपना भाव चले 15-20 रुपए, और कहीं 60 रुपए,
1: हाँ
0: कहीं 80 रुपए, कहीं 100 रुपए, मन
1: अच्छा
0: मर्जी भाव है,
1: सब अलग अलग
0: बाकी
1: भाव है।
0: सब अलग अलग भाव है। और अपना गांव में तो कुमारी बासणी में भाव चले 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, ज्यादा
1: देसी
0: ज्यादा पच्चीस
1: देसी
0: रुपए
1: अंडा का
0: हाँ
1: कितना ही थे। हाँ
0: देसी सोनाली का नस्ल है,
1: हाँ
0: देसी अंडा है, बाकी कुमारी बासणी में भाव 25-30 रुपए चले, 25 रुपए, ज्यादा ज्यादा सर्दी होने 25 आगे काली बीते है।
1: पचे फार्मिंग के मायने अपने जान अबार बताया कि भाई अबार जान वो मौसम है, कहीं बरसात आ जावे कहीं गर्मी आ जावे, तो इन मायने भी कोई सावधानी रखनी पड़ेगी।
0: हाँ बड़ी जो को सावधान रखने जरूरत को नहीं, छोटी में सावधान रखने पड़े।
1: अच्छा छोटी के मायने पचे जान सियाड़ा में आपके वो सियाड़ा में लावा आपा तो ब्याह में पच का ब्याह और टोर करना पड़े कि गाय भैंसा का आपा करा
0: हाँ
1: जो।
0: हाँ ऑटो तो करना पड़े ना, ऑटो करना पड़े, सर्दी का रात का टाइम उसको अंधेरा में रखना पड़े, ताकि चांदना मेहनत कहीं है वो इंडा दबा को नहीं, इंडा कम हो जाए, अंधेरा में रखा
1: अच्छा
0: ना माने 8-10 घंटा
1: हाँ
0: एकदम अंदर हो, लाइट अटकी भी नहीं होनी चाहिए,
1: हाँ जन बे अंडा
0: जदे
1: देव।
0: कहीं है थोड़ा बहुत है ना, अंडा पड़ा मैंने गोली मने, और अंडा थोड़ा ज्यादा दे, चांदना
1: अच्छा एक और पूछ,
0: मैंने कहीं
1: हाँ
0: अंडा
1: हाँ
0: कम दिया करे।
1: अच्छा मोहम्मद अली जी एक और पूछूं के जान एक मुर्गी है जी का कितना अंडा दे देवे।
0: एक मुर्गी इसमें 60% अंडा दिया करे, 55% 60, 100 मुर्गी हमें ना 55-60 अंडा दिया करे,
1: अच्छा
0: बाकी 100 नहीं दिया करे।
1: पचे ए अंडा माते कितना दिन बैठे जन बे, शेर और ब्यामू बच्चों निकल जावे कितना दिन
0: वो
1: बैठे।
0: तो 40 दिन बिटिया करे, 45 दिन,
1: 40-45 दिन नू
0: चालीस
1: पचे।
0: पैंतालीस दिन
1: हाँ ध्यान थे बताया किसी नस्ल की आपांगे सोनाली।
0: सोनाली नस्ल
1: हाँ हाँ
0: अपन
1: तो पचे और दूसरी नस्ल भी खाली आपांगे ने सोनाली है कि और भी नस्ल आए।
0: ने, अपना का ना सोनाली नस्ल, दूसरी नस्ल नहीं है,
1: अच्छा आपा ध्यान मिक्स नस्ल की आपा पाल नहीं सका कि एक नस्ल की पाली थे।
0: नहीं मैं तो पालू को नहीं ना, मैं तो बच्चे ले रहा हूँ, अजमेर हूँ,
1: हाँ हाँ नहीं ध्यान
0: अजमेर हूँ,
1: आपा
0: एक दिन का
1: पाल
0: बच्चा,
1: सका ना भाई, अलग अलग नस्ल की हुए तो भेड़ा ही ध्यान है आपांगे घरेलू कई रखे ना अलग अलग नस्ल का तो
0: हाँ
1: बीर।
0: रखिया करें जो अपने घर में रखिया करें ना, दो दो चीचा मुर्गियाँ, तो बे तो आदमी कहीं करिया करे, दो चार मुर्गियाँ बे इंडा दवा, गर्मी आवे गर्मी में इंडा के बिके को नहीं, जब बे कहीं करे सेवा बिटा लिया करे, माने
1: हाँ पच ब्यांग का बच्चा हो
0: सेवा
1: जावे।
0: बिटा लिया, पाचा बे बच्चा निकल जाए, बच्चा ने मुर्गिया भी ध्यान रखे, अपन ध्यान रखने जरूरत को नहीं,
1: अच्छा अपना आप ही ध्यान रखे बच खिलावे पिलावे बा माँ खुद ही ध्यान चिड़िया ने
0: माँ
1: खिलावे जो।
0: खुद हाँ जो खिला लो है, मैं तो कहीं मोटा मोटा फार्म एंड हो तो माने तो खुद ध्यान रखना पड़े,
1: हाँ हाँ एक और पूछू
0: समझ
1: के भाई ध्यान यहाँ की बिंटा भी आपा के

0: खाद वगैरह में काम आवेगी।
1: हाँ बेटा, सोना बराबर उसके अगर काला गोल्ड सीधी
0: अच्छा
1: बात है। हाँ
0: हाँ, पर इराकाई भाव बिक जावे आपांगे मिर्गी
1: और अपना खुद
0: मुर्गे
1: के खेत
0: बीज।
1: है, खुद
0: हाँ
1: अपना तो खुद के खेत है, खुद में खेत में नेकू, बाकी मैच तो बेची कौन है।
0: अच्छा, तो ये भावड़ा क्या मिले खाद का, छोका मिल जावे ना।
1: भावड़ा क्या ज्यादा बिक गया, टोली का 8-10 हज़ार रुपये बटिया करे, नेके तो अपना
0: अच्छा,
1: काम बटिया कौन है।
0: जन कुल मिला रहे आपांगे तो ये गोबर खाद तो इरा बढ़िया मिल जावे, यूं पचे का फसल छोको मिल जावे नी।
1: हाँ मैं सुनिया नहीं, अपने 3-4 टोली बेने को, 1 टोली होने को बराबर कार कर रखे का
0: अच्छा
1: मैंने। हाँ
0: बराबर कार करे। हाँ एक और पूछूं मोहम्मद अली जी के, आज की जान आपांगे हारी बीमारी आवे, जान कोई बीमार हो जावे तो थे क्या पहचानो के भाई आ मुर्गी है जिको बीमार है, पचे भी का इलाज करो छोटो
1: नहीं
0: मोटो
1: इलाज है
0: इलाज।
1: ना, बाकी नहीं पहले तो ना वो वैक्सीन करनी पड़े, थोड़ी बहुत दवाइयाँ देनी पड़े,
0: टेमो टेम
1: और
0: हगड़ा नहीं
1: अब
0: देनी पड़े नी।
1: हाँ सबने पानी मिला मिला देनी पड़े।
0: अच्छा पहली दे दो ताकि वे बीमार पड़े को नहीं।
1: हाँ पहले भी देनी पड़े और पचे भी जो बीमार हो जाए तो दवाई देनी पड़े,
0: हाँ
1: जब बीमे 3-4 इतनी बीमारी है, या करे जो ज्यादा बीमारी है, बीमारी तो
0: एक
1: वही है
0: रानी खेत
1: अपना
0: भी
1: में, जो
0: शायद
1: अपना
0: हुए
1: में बीमारी
0: बीमारी है
1: हो
0: ना,
1: जानवर में बीमारी हुआ है।
0: तो जिकी
1: हाँ वो
0: बीमार हुए
1: करानी,
0: मुर्गे प्यांको का ही ध्यान रखो।
1: हाँ जो नहीं फार्म में फिरानी, जो वो देखा गया सुस्त है, पानी नहीं पीवे, दाणो नहीं खावे, मतलब जो ठा तो पड़ जाओ ना
0: हाँ,
1: अपने
0: बात तो अच्छा
1: मुर्गे
0: पड़
1: में
0: जाओ।
1: फिरा बिना बिना। एक मुर्गी ने कहा मैं साइड में ले लिया, अलग एक और पिंजरा रख क्या करा
0: हाँ
1: साइड
0: बीमार
1: में।
0: बीमार है जिकी।
1: हाँ बीमार बीमार बिना अलग कर लिया करना पहले ही, ताकि कहीं वो बीमारी दूजा में नहीं लागे। हाँ
0: हाँ सही बात है भाई, आपा हावचेती पहली कर ला ताकि आपांगे बे है जिको।
1: सावचेती
0: हाँ
1: पहले करनी पड़े, बाकी
0: हाँ
1: इन्हें बीमार हुआ बाद में एक सौ दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा
0: हाँ पचे
1: चौथा
0: तो सगड़ी ज्यादा हो जावे आपांगे नुकसान हो
1: हाँ
0: जावे।
1: ज्यादा हो जाए,
0: हाँ हाँ
1: नुकसान हो जाए। हाँ
0: एक और पूछू मोहम्मद अली जी के, ज्ञान आपा है जिको के ओ एक साल में इरो कितो फायदो हो जावे, ताकि माता किसान भाई कोई शुरू करनी चाहे तो मुर्गी पालन करना शुरू कर देवे।
1: मारो अनुभव बताऊं, मैंने पेल पर 225 बच्चा लायो नहीं, जदे 1 लाख रुपए मैंने खिला दिया,
0: हाँ,
1: 1,15,000 रुपया,
0: कितना महीना में,
1: 1,12,000 मैंने,
0: 12 महीना। हाँ
1: मैं 10 महीना चले पूरी
0: हाँ
1: सीजन,
0: हाँ हाँ
1: 10 महीना में 1,15,000 रुपया खिला दिया, वो मैंने दिया 2,15,000 रुपया,
0: 2,15,000। हाँ
1: 2,15,000 दिया भाई अपना, आपका 1,15,000 खर्चा कार्ड पर लाल बचे 1,00,000 रुपया,
0: हाँ
1: कुछ
0: ठीक
1: मारा
0: है।
1: कहीं एक पार्टनरशिप राखोड़ा जी 25% भी न दियोड़ो
0: हाँ भी मैं भी रखना
1: पच्ची
0: पड़े आदमी पर कितना ध्यान, 225 मुर्गिया मत कितना आदमी रखना पड़े
1: नहीं आदमी की जरूरत नहीं, घर
0: की
1: का मेल
0: जरूरत
1: हो
0: है
1: लुगाई
0: घर का
1: टाबर
0: ही।
1: का मेल है की
0: अच्छा भाई
1: जरूरत बन, वो
0: संभाल
1: कहते
0: लो
1: मैं
0: तुम।
1: खुद करूं कौन है ना जुगो,
0: अच्छा
1: मैंने लुगाई टाबर हो तो बच्चा तो हमें कट चाहिए आदमी।
0: एक और पूछू के जान आपांगे कोई मुर्गियां आपस में भी लड़े कई बार देखा, तो पचे बे
1: हाँ
0: लड़े चिका को काई करो, यान अलग
1: लड़ा
0: अलग
1: जिका
0: रखो।
1: जो लड़न लाग जाओ ना बच्चा, दोबारा मेरे पास अलग कर दिया करा, मुर्गा ने अलग कर दा, मुर्गिया ने अलग कर दा, वो देखा उसका 10 मुर्गियां ना अभी मैं 1 मुर्गा रखा,
0: अच्छा,
1: अपना 100 मुर्गियां है अभी मैं 10 मुर्गा रखा,
0: 10 मुर्गा, पचे सबका अलग अलग पिंजरा रख दो यूं तो।
1: मतलब 200-220 मेरा बच जब यूं करा 10 मुर्गियां ऊपर 1 मुर्गा रखा।
0: वाह सा वाह मोहम्मद अली जी थे, मांगू इतनी छोकी छोकी बात करी, थांको घणो मानू,
1: ठीक है।
0: धन्यवाद, राम राम सा।
2: तो देखो मांगीलाल भाई के जकी बात करी मुर्गी पालन के ही, जकी देखो कितनी चौकी बात बताई कि भाई राकेश भाई जकी बात करी बहु तो बाने काई कियो, मोहम्मद अली जी कह रहा है कि जकी मुर्गी पालन के मायने देखो बाने इनकम भी हो रही है, इनकम को सोर्स भी है, और कम जगह के मायने कम खर्चे के मायने बे है जको वो व्यवसाय कर रिया है।
3: बिल्कुल कर रही है। और प्रेरणा का ही देखो, बहन है जी को कहीं है कि दो चार मुर्गियां ने माए नहीं चोको है जी को आयरो साधन बना लियो, बेहू प्रेरणा ले प्रा, और एक अच्छो है जी को मुर्गी पालन रो फॉर्म खोल रियो
2: खोल लियो।
3: खोल लियो तो बहुत ही बढ़िया। और अब देखो कि अति हांतरी अपन है जी को बात बताइए, तो अपनों भी की फर्ज बने
2: बिल्कुल
3: के कोई
2: काम की
3: एने।
2: बात होनी चाहिए।
3: हाँ काम की बात।
2: क्यों आप बातें करते ही रहे, उन किसान के भी काम की बात हुए ना,
3: हाँ
2: और देखो के धरती माता कही है कि किसान ही है अंधे होता, तो बाने भी काम की बात वे भी तो सुनना डीगे, तो सुनो काम की बात।

0: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: तो देखो मांगीलाल भाई, काम की बात भी कर ली भी, काम की बात सुन भी ली भी, पर किसान भाई अडीगरिया का शाम की है टाइम, और शाम की टाइम काम की बात के साथ साथ मनोरंजन होना बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल,
0: और देखो यहाँ पर देख ही है कि यहाँ पर का किसान भाई खेत आता और खेत में जानता हाथ में टिपण ले उड़ो, और देखो अकेले ही हुए तो ही देखो गुनगुनाता गीत गया गिरिया गिरिया करे।
5: बिल्कुल,
0: और अभी जो की शाम की टाइम हो रही तो भाई आंपा भी की आस रखे,
5: आस रखे। तो देखो भाई कानार मायने मिश्री गोलता था का आपा बेने सुनावा ओ लोक गीत जिकान गावे स्वदेश तिवाड़ी और हमारी पार्टी।

किसान भाई अभी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति लता मंगेशकर के गाए गीत के साथ, जिसे हमने लिया है मेरा गांव मेरा देश फिल्म से।

लुटा ना करो वो जाने जाना, ये तो है रुसवाई प्यार की। इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक।

दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने, मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना

0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत, हीरा पन्ना फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले को।
1: कुछ कहा?
2: जितना मैं सुलझाऊं और उलझती जाए।
1: सच

0: है तू।
1: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजने को है। अब आप फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनेंगे।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूं आपका दोस्त लेकर आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये वो प्रोग्राम है जिसमें फ़ोन कॉल्स के द्वारा आपकी की गई फरमाइशों के गीत हम आपको सुनवाते हैं। तो करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं प्रोग्राम की पहली कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम योगेश गहलोत है सर।
0: हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं योगेश जी आप?
1: सर मैं नागौर से बोल रहा हूँ, माही दरवाजे से।
0: अच्छा, माही दरवाजे
1: से दरवाजा का रहने वाला हूँ।
0: जी जी, क्या करते हैं आप?
1: सर मेरे इलेक्ट्रिक दुकान है, रेडियो वगैरह ये भी सुधारते हैं और कई प्रकार की इलेक्ट्रिक सर्विस करते हैं।
0: अच्छा, तो आप कौन से गाने सुनना पसंद करते हैं, पुराने या नए?
1: सर पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो उसमें गाने के पूरे बोल आते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ सर।
0: हाँ, रचनाएं अच्छी होती है और संगीत भी मधुर होता है,
1: उसमें पूरा बोल का मतलब होता है।
0: जी जी जी। तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: समय तू धीरे धीरे चल।
0: जी, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रामपाल नाणिया बोल रहा हूँ साहब, इनाना से। जी
0: इनाना गांव से बोल रहे हैं
1: हेलो,
0: जी। क्या करते हैं आप? हाँ, क्या काम करते हैं?
1: हम क्या खेती बाड़ी करते हैं साहब।
0: अच्छा, तो खेती बाड़ी में बारानी खेती लेते हैं या ट्यूबवेल है अपने?
1: नहीं, ट्यूबवेल है, जीरा,
0: ट्यूबवेल है। तो कौन कौन सी फसलें लेते हैं?
1: इसबगोल, सौंफ, यही होते हैं।
0: अच्छा, तो अभी खेत की तैयारी चल रही होगी।
1: अभी तैयारी, अभी तय निकाली है, अभी खेत
0: जी
1: तैयार कर रहे हैं।
0: अच्छा, खेत तैयार कर रहे हैं। तो कब तक इसकी बिजाई आप शुरू करेंगे?
1: अब बिजाई बारिश होने के बाद ही करेंगे,
0: जी, तो कितने दिन हो जाएंगे लगभग?
1: लगभग 1 महीने बाद करेंगे बिजाई।
0: अच्छा, 1 महीना बात करेंगे। तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, मैं ओम प्रकाश जाटोलिया बोलूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नए दौर फिल्म का साथी
0: अच्छा
1: हाथ बढ़ाना साथी, वो गाना सुना दे रहा। ओम प्रकाश जाटोलिया नागौर से।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर फिल्म नया दौर का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो,
0: फरमाइश, बोल रहे हैं?
1: नागौर से धनराज बोल रहा हूँ।
0: नागौर पे किस जगह से बोल रहे हैं?
1: कुमारवाड़ा निवार गली से।
0: क्या काम करते हैं सर आप?
1: अभी तो फर्नीचर का काम करता हूँ भाई। काम
0: तो कैसा चल रहा है काम आपका?
1: बढ़िया चल रहा है। मेरे पास सब पीसीटे हैं, सब मेमोरी में सब गीत बने हुए हैं। फिर भी
0: अच्छा।
1: मैं पब्लिक के साथ सुनना चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
0: ये तो अच्छी बात है कि रेडियो में सुनने का जो मजा आता है।
1: वो मतलब पूरी पब्लिक के साथ एक गीत पूरी पब्लिक साथ सुनना अच्छा लगता है। एक तो अपन खुद सुने, एक पब्लिक साथ सुने, बहुत फर्क लगता
0: बिल्कुल बिल्कुल। कौन से गाने पसंद करते हैं, नए या पुराने?
1: है। गीत तो मतलब है 2000 पहले, मतलब है 2000 के पहले की है। हाँ सुना दो ना कोई भी आपके मन पसंद का।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवा रहे हैं हमारी पसंद पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं आज पेंटर बोल रहा हूँ, माई दरवाजा लवारपुरा से। अच्छे
0: हाँ, तो क्या हालचाल हैं आपके?
1: हैं सर।
0: कौन से गाने पसंद करते हैं, नए या पुराने?
1: सर मैं ज्यादा करता हूँ पुराने ही करता हूँ सर, 90 90 तक के गाने करता हूँ मैं। 90 तक
0: जी
1: फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी।
0: जी
1: गाने के बोल हैं, अपना है तू बेगाना नहीं, मोहम्मद रफी साहब का गाना है सर।
0: जी जी बड़ा अच्छा गाना है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गाना।
1: शुक्रिया सर।

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, अगर आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 015-82-240-168, और हमारे इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। चलते चलते आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया जितेंद्र कुमार ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गोयल। तो दीजिए अगले कार्यक्रम तक अपने दोस्त अहमद अली को इजाजत। नमस्कार।

हेलो फरमाइश, अभी आप हमारा ये फ़ोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिंग लोक संगीत का कार्यक्रम चिरमी। इसमें हमारे आज के कलाकार हैं समूह स्वर। तो आइए सुनते हैं इनकी गाई कुछ लोक प्रस्तुतियाँ।

लोक संगीत के कार्यक्रम चिरमी में आप सुन रहे हैं समूह स्वर में कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: समूह स्वर में अभी आप लोक संगीत के इस चिरमी कार्यक्रम में सुन रहे थे कुछ लोकगीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से सुनेंगे समाचार संध्या।
1: संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित

0: करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम दर्द भरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, मोहम्मद रफी का गाया तुमसा नहीं देखा फिल्म से।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, ललकार फिल्म से लता मंगेशकर का गाया, और उसके बाद आप सुनेंगे हेमंत कुमार को 20 साल बाद फिल्म से, ये दोनों गीत।

0: कार्यक्रम दर्द भरे गीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हैं। अब आप विविध भारती मुंबई से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

सुनीता दत्त और कुमार का लिखा ये अगला गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल और शेखर ने। बैनी दयाल और नीति मोहन की आवाजें हैं। फिल्म का नाम बैंग बैंग।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में शानदार फिल्म का ये गीत, अमित त्रिवेदी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

शानदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी अमित त्रिवेदी की। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने। इसी के साथ शीर्षक संगीत का ये कार्यक्रम आपके लिए यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एच

वी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाईं। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का।

0: फिर कहीं और चल।
1: संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

सन 1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते हैं।
2: राही मतवाले तू खेड़ कुबार मन का।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण अभी आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे। एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल दिन में 8:55 पर हमारी पहली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।